0: कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद किने वख्यानी
1: सच सच सच सब कीना
0: कोट मदेखिन बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर पार रूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: काट कर सुनी स्वर्ण।

0: संत के दुख संतान भ्रष्ट होए,
1: संत कृपाल कृपा जे करे,
0: नानक संत संग निंदक भी तरे,
1: संत के दुखन ते मुख पवे,
0: संतन के दुखन कार ज्यों लवे,
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
0: संत के दुखन तीर्थ जोन करमाए,
1: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
0: संत के दुखन सब को चले,
1: संत के दुखन तेज सब जाए,
0: संत के दुखन नीचन जाए,
1: संत दुखी का थाओ को नाए,
0: नानक संत पावे ता ओ भी गत पाए,
1: संत का निंदक महातताए,
0: संत का निंदक टेकन न पाए,
1: संत का निंदक महात्यारा,
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
1: संत का निंदक राज ते हीना,
0: संत का निंदक दुखियार दीन,
1: संत के निंदक को सर्व रोग,
0: संत के निंदक को सदा बजोग,
1: संत की निंदा दोख में दोख,
0: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख,
1: संत का दुखी सदा पवित्र,
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित,
1: संत के दुखी को दान लागे,
0: संत के दुखी को सब त्यागे,
1: संत का दुखी मांकारी,
0: संत का दुखी सदा भकारी,
1: संत का दुखी जन्मे मरे,
0: संत की दुख ना सुखते तरे,
1: संत के दुखी को नाही ठाओ,
0: नानक संत पावे ता ले मलाए,
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे,
0: संत का दुखी किते काज ना पहुंचे,
1: संत के दुखी को उद्यान परमाइये,
0: संत का दुखी उजड़ पाइये,
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
0: जो सास बिना मृत

0: संत का दुखी सद मिथ्या कहत
1: कीर्त निंदक का तुरही पया
0: नानक ज्योतिष पावे सोई थया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होई जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइये
0: संत का दुखी ना मरे ना जवाइये
1: संत के दुखी की पूजे ना आसा
0: संत का दुखी उठ चले नरासा
1: संत के दुख न तिष्ठे कोए
0: जैसा पावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तना मिटे कोए
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कट पिसके हो करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: सब की उस्तत करो दिन रात
0: जिसे त्यावो सास ग्रास
1: सब कछ वरते तिसका किया
0: जैसा करे तैसा

0: दिने निरंजन जानिया
1: गुर प्रसाद अपने आप सूजे
0: जिसकी जानो तिस ना बूझे
1: साध संग हर हर जस कहत
0: सर्व रोग ते हर जन रहत
1: अंदर कीर्तन केवल बतियान
0: ग्रस्त में सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जिस जन की आशा
0: जिसकी कटके जम की

0: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
1: आपे आप सगल मैं आप
0: अनेक जोक्तराज थाप थाप
1: अविनाशी नाही किछ खंड
0: कारण तारो ब्रह्मांड
1: अलख पेव पुरत परताप
0: आप जपाए ता नानक जाप
1: जिन प्रभ जाता सो सोभावंत
0: सगल संसार उदरे तिन मंत
1: प्रभ के सेवक सगल उदाहरण
0: प्रभ के सेवक दुख बसारन
1: आपे मेल लय कृपाल
0: उनका सब जपे निहाल
1: उनकी सेवा सोई लागे
0: जिसनो कृपा करे बड पागे
1: नाम जपत पावे विश्राम
0: नानक तिन पुर को उत्तम कर मान
1: जो किसी करे सो प्रभ के रंग
0: सदा सदा बसे हर संग।

0: नाम के संग उतरे सुन सरवन
1: हर कृपा किसे अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद मैस जनगत पाए
1: रूप सत जाका सत स्थान
0: पुरख सत केवल प्रधान
1: करतूत सत सत जाकी बाणी
0: सत पुरख समय सुमानी
1: सत कर्म जाकी रचना सत
0: बोल सत सत उत्पत
1: सत करनी निर्मल निर्मली
0: जिसे बजाए तिसे सब भली
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई
0: विश्वास सत नानक

0: सरस्वती चरण सत सत परसन हार
1: पूजा सत सत सेव धार
0: दर्शन सत सत पेथन हार
1: नाम सत सत त्यावन हार
0: आप सत सत सब तारी
1: आपे गुण आपे गुणकारी
0: शब्द सत सत प्रभ भक्ता
1: सर्त सत सत जस सुनता
0: पूजन हार कौ सत सब होए
1: गान सत सत प्रभ सोए
0: सत स्वरूप हृदय जिन मान्या
1: कर्ण करावन तिन मूल पछान्या
0: जाके हृदय विश्वास प्रभ आया
1: सत ज्ञान तिस मन प्रताया
0: है ते निर्भय होए बसाना
1: जिसे उपजया तिस माए

0: अंधकार दीपक पर गासे
1: नान परमो दुख तहते नासे
0: तपत माहे ठाड वरताई
1: नंद भया दुख नाठे पाई
0: जन्म मरण के मिटे अदेसे
1: साधु के पूर्ण उपदेसे
0: पोचूका निर्भो होए बसे
1: सगल व्याथ मन थे खै नसे
0: निष्का सातन कृपा तारी
1: सा संग जप नाम मरारी
0: हित पाई चूके परम गवन
1: सुन नानक हर हर जस सर्वन
0: निर्गुण आप सरगुण भी ओही
1: कला ताजन सगली मोही।

0: सिमर सास सवेद विचारे
1: हर की भगत करो मन लाए
0: मन बसंत नानक फल पाए
1: संग न चालस तीरे तना
0: तू क्या लपटाए मूर्ख मना
1: सुत मीत कुटंबर बनता
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा
1: राज रंग माया विस्तार
0: इनते कहो कवन छुटकार
1: हस हस्ती रात सवारी
0: झूठा डाप झूठ पसारी।

0: उपावे संग
1: एक बस्ती जय कर मया
0: और प्रसाद नाम जप लया
1: ताकि उपमा कही ना जाए
0: नान क्रिया सर्व समाए
1: प्रभु बख्शांत दीन दयाल
0: पावत बचाल सदा।

0: नानक तुमरी शरण पर भगवान
1: सर्व वैकुंठ मुकत मोख पाए
0: एक निम कर के गुण गाए
1: अनेक राग भोग बड़े आए
0: हर के नाम की कथा मन पाई
1: वो भोजन का पर संगीत
0: रसना जपती हर हर नीत
1: मलिस करनी शोभा।

0: तै जन्म रखो का बनासन
1: जब पूरन करता प्रभ सोए
0: तब जानकी त्रास कहो किस होए
1: जब अभिगत अगोचर प्रभ एका
0: तब चित्र गुप्त कुछ पूछत लेखा
1: जब नाथ निरंजन

0: अपन संग बनाई,
1: तब कवन माई बाप मित्र सुत पाई,
0: जय सर्व कला आपे परवीन,
1: तै वेद देव कहाँ कौचीन,
0: जब अपने आप उतारे,
1: तब सगन सगन कहाँ बेचारे,
0: जय अपनी ऊंच अपने आप नीरा,
1: तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा,
0: विस्मन विस्मरे विस्माज,
1: दान के अपनी गत जानो आप,
0: जय अचल अचेत भेद समाया,
1: वहाँ किसे व्यापत माया,
0: आपस को अपे आदेश,
1: तै गुण का नाही परवेश,
0: जय एक एक एक भगवंता,
1: तै कौन चिंतक लागे चिंता,
0: जय अपने आप परियारा,
1: तै कौन कथे कौन सुनने हारा,
0: वह बेअंत ऊंचे ऊंचा,
1: नान के आपस को आपे पहुंचा,
0: जय आप रचियो पर पंच आकार,
1: तै गुण में कीनो विस्तार,
0: पाप पुण्य तै पई कहावत,
1: कौ नर को स्वर्ग

0: आपन सोसर जगत परोए
1: जाको प्रभु आप बुझाए
0: सच नाम सोई जन पाए
1: सो समदर्शी तत का बेटा
0: नानक सगर श्रेष्ठ का जेता
1: ई जंतर सब ताके हाथ
0: दीन दयाल नाथ को नाथ
1: जिस राखे तिस कोई ना मारे
0: सो मुआ जिस मनो बसारे।

0: जो ते से हाथ
1: इस पावे तिस लय मिलाए
0: भक्त करे हर के गुण गाए
1: मन अंतर विश्वास कर मानिया
0: कारण हार नानक एक जानिया
1: जन लागा हर एक नाए
0: तिसकी आस न बिरथी जाए
1: सेवको सेवा बन आई
0: हुकम बोझ परम पद पाई
1: इससे ऊपर नहीं विचार
0: जाके मन बसिया निरंकार
1: बंधन तोर पे निर्वैर
0: बंधन पूजे पैर
1: ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले
0: नानक हर प्रभ आपे मेले
1: साध संग मिल करो आनंद
0: गुण गावो पर परमानंद
1: राम नाम तत करो विचार
0: कर लव देखा करो आधार
1: अमृत बचन हर

0: नाम जपत मन होवत सुख,
1: चित्ता जाए मिटे अहंकार,
0: तिस जन को कोई न पहुंचन हार,
1: सिर ऊपर ठाडा गुर सूरा,
0: नानक ताके कार्य पूरा,
1: मत पूरी अमृत जाके दिस,
0: दर्शन पेखत रोदर श्रेष्ठ,
1: चरण कमल जाके अनूप,
0: सफल दर्शन सुंदर हर रूप,
1: तन सेवा सेवक परवान,
0: अंतर जामी पुरख प्रधान।

0: वंदे सर्व धर्म
1: संत जना सुने शुभ वचन
0: सर्व आपी नाम संग रचन
1: जिन जाता तिसकी ये रहत
0: सत वचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सोई सुख मान
0: कर्ण करावन हार प्रभ जाने
1: अंतर बसे बाहर पी हो ही
0: नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत किया सब सत
0: तिस पव तेस

0: अपने जी की आप साच तारी सब साच भूत पोत अपन संग राच
1: ताकि गतमित कहीं ना जाए
0: दूसर होए तो सो जी पाए
1: इसका किया सब परवान
0: और प्रसाद नानके हो जान
1: जो जाने तिस सदा सुख होए
0: आप मिलाए लए प्रभ सोए
1: ओ तनवंत कुलवंत पतवंत
0: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत
1: तन तन तन जन आया
0: जिस प्रसाद सब जागत।

0: तूर मन मंग
1: आप छोड़ बेंती करो
0: सासंग अगन सागर तरो
1: हर तन के पर लियो पंडार
0: नानक और पूरे नमस्कार
1: हेम कुशल सहजानंद
0: सासंग पज परमानंद
1: नरक निवारो दारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितवो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख पंजन पूर्ण कृपाल।

जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणे जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया।

दालय तुम मम करो सदा व्रत पारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दाह जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन दुआर तुहे तो

फिर सुनियो, जिनी जिन्ना ने नाम गुरु का शब्द विसारिया, कला कला अखर भोला दिता छड दिता, तो गरीब निवाज कहिंदे मोए है ते जिउंदे ने पर जिउंदे ही मरे ने, मोए मर जाहे ते एक दिन फिर मर जाना है, जिउंदे ही वो आत्म घाती है, रोजाना दे मरे ने, तुहानू बोल याद आ जाने ने। साहब कहिंदे मर ना जाही, मर ना जाही, जिन्ना बिसरत नाम राम नाम बिहून जीवन कौन काम, खात पीत खेलत, खात पीत खेलत विस्थार, दसो तुसी कवन अर्थ मृतक सिंगार, कादे अर्थ है मुर्दे का शिंगार, जे मुर्दे का शिंगार है ओनू चंदन चढ़ाओ ता भी कोई गल नहीं, बिस्टा विचर लाई जाओ ता भी कोई बात नहीं है, जे मृत को चंदन चढ़ावे उस ते कहो कौन है फल पावे, जे मृत को बिस्टा माहिर लाई तुसी आपे दस दियो ता मृतक का क्या घट जाई, मरना जाही जिन्ना बिसरत राम नाम भी हून जीवन कौन काम, खात पीत

परमगत चाह मूल बिना साखा कत आह। एक बोल होर कह के फिर अगा तुरा। कन्न बिना जैसे थोथर धुखा, जिन्ना तलां विचों तिल कढ लिया जावे बाकी की रह जांदा है, वो बेकार खत्म हो गए ने। कन्न बिना जैसे थोथर धुखा, नाम बिहून नाम तो सखणे सुने से मुखा, ओ मुख सुंजे ने ओ पो वर्गे ने बेकार ने। कन्न बिना जैसे थोथर धुखा, नाम बिहून सुने से मुखा, हर हर नाम नित जपो प्राणी, नाम बिहून त्रिग देह बेगानी। वाहिगुरु, नाम बिना ना ही मुख भाग, नाम बिना ना ही मुख भाग। ता सब कहिंदे ने किदा, भरत बिहून नाही सुहाग। भरत भरत पति तो बिना सुहाग नहीं है, ते नाम तो बिना भाग नहीं है, नाम तो बिना भाग नहीं है। तां गरीब नवाज जी कृपा करदे ने।

सारी संगत करो कृपा, एक बारी सतगुरु के चरणों च अरदास करो, जोतड़ी करो, सारे दास नाल बोलो, कोई रस्मा खाली ना रहे, कद नानक आवे बारे।

तू ठाकुर तुम पहरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कने कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी बोलना जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पात साहि दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए सहाय हर जन हर गोबिंद नाम सिमरऊ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिठे शब्द भजाय एक बहादुर सिमरिया कर नौन दयावे ताय सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाही सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिन नाम जपया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमृत किया तिना प्यारिया सच्यारिया की कमाई का ध्यान तरके बोलना जी जिन्ना

आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंदिनो मोहे आही पियासा, कृपा जल देह नानक सारंको होए जाते तेरे नाए वासा। रा गौड़ी पूर्वी महल्ला चौथा, काम क्रोध नगर बहु भरया, मिल साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडोत पुन वड्डा है, रहाओ साकत हर साध न जानया, तिन अंतर हम मैं कंडा है। ज्यो ज्यो चलह चुभ दुख पावे, जम काल सह सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण भव खंडा है। अविनाशी पूर्वक पाया परमेश्वर, बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रप तेरे, हर राख राख वड्डा है। जन नानक नाम धार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। रा गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बिनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसंत सवेला। औद घटे दिन सरैना रे, मन गुर मिल काज सवारे, रहाओ एहो संसार विकार संसे मह, तरे हो ब्रह्म ज्ञानी, जिस है जगाए पियावे, एहो रस अखत कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाजो, हर गुरते मने बसेरा, निज कर महल पाहो।

0: Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Guru, I, Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वा Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru.
1: Hi, Guru.

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru,

नौखण पृथ्वी फिर चर जीवाय मां उदास पीसर थीवाय अगर मायो हमत प्राण कनक सब है प्रभु मदान निवली कर्म कराय बहुआसन जैन मारग संयमत साधन

संघ सहाय तुझ पर हराय चंदन लेप उतारे तो हे गर्द प्रीत पसम संग होए अंधकूप में पतत विकराल नान काढ़ प्रभ दयाल करतूत पशु की मान जात लोग बचारा करे दिन रात बाहर भेघ अंदर मल माया शब सनाहे कश करा शपाया।

ब्रह्मज्ञानी कहते हैं एक जो वसुदा कहु खोदे कहु चंदन लेप ब्रह्मज्ञानी यह गुनाव नानक जो बावक का सह स्वभाव ब्रह्मज्ञानी निर्मल थे निर्मला जैसे मैल न लगे जला ब्रह्मज्ञानी के मानो है प्रकाश जैसे तरुपरी आकाश ब्रह्मज्ञानी के मित्र शत्रु समान ब्रह्मज्ञानी के नाहि अभिमान ब्रह्मज्ञानी उच दे ऊंचा मन अपना सबते नीचा ब्रह्मज्ञानी से जन भय नानक जिन प्रभाव करे

ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन बट भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मनवाहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाखियर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंतरा पार नानक, ब्रह्म ज्ञानी का सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवा नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता,

सदा बसे पार ब्रह्म कै संग जो जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभु गए सतगुरबान सलोक।

स्वर्ग स्वर्ग फिर फिर अवतार, अनक जतन करे आत्म नहीं, द्रवय हर तरगे को कैसे गवाए, आपस को जो भला घावे तसे भलाई निकट न आवाए, सर्व की रेन जाका मन में कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते का सोए तब उसको सुख नाही गोए, जब जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब तारे को बैरी मी तब लग नेचल नाही चीत, जब लग वो मगन संग माए तब लग

राष्ट्रपति संत गए दुखन यार जागट है, संत गए दुखन जमते नहीं छुटा है, संत गए दुखन सुख सब जाए, संत गए दुखन नरक में पाए, संत गए दुखन मातोए मलीन, संत गए दुखन सो बाते हीन, संत कहते गो रखे ना कोई, संत के दुख थान पर

जय अष्टपदि मानु कीट एक बृति सब जान देवन को एका भगवान जिस गए दिया रहे अगाए बौर न दृष्णा लागे आए मारे राखे एक हुआ मानु गए जनाई हाथ जिसका हुकम भू सुख हुए जिसका नाम रखंड पुरोए सेमर सेमर सेमर प्रभ सोए

जो मंदिर को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मने थमन जो पा खाणाव चढ़तर प्राणी गुर चरण लगत निस्तरा जो अंधकार दीपक प्रकास गुर दर्शन देख मन हुए विकास जो महाउद्यान में मार्ग पाप त्यों साधु संगमिल जोत प्रगटाव है तिन संतन की बांछो तूर नानक की हर रुचा पूर मन मूर्ख का इबर लाइये प्रभु लिखे का लिखिया पाइये दुख सुप्रभु देवन हार अवर त्याग तू तसे चितार जो कश कर सोई सुखमान भूला काहे फिरे अजान कौन बस आई तेरा संग लपट रहो रास लोभी पतंग राम नाम जब हृदय माहे नानक पात से ती कर जाहे जिस वकर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज मान लिहो मन मोर राम नाम हृदय में तोल लाद खेप संते संग चाल वर त्याग बिख्या जंजाल तन तन कह सब कुए मुकूजल हर दुर्गे सुए ए बा पार बिरला बा पारे नानक था के सदबलहारे चरण साध के तोये तोये प्योर प्रसाद को अपना जियो साध की धूर करो स्नान साधु पर जाइये कुर्बान सा सेवा बटभागी पाइये सा संघर कीर्तन गाइये अनक बेगंदे साधु राखे हर गुण गाये अमृत रस चाखे ओढ़ गई संतेंद्र आया सर्व सुख नानक दे पाया मृतक को जी बालन हार भूखे को देवता आधार सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे प्रभु लिखे का लहना पाहे सबकी तिस्का वो करने जोग तस्बिन दूसर हुआ ना होग जब जन सदा सदा दिन रहनी सब त्योज निर्मल ए करनी कर

बार प्रभु जपिए भी अमृते मंत्र प्रियाय नाम रतनजन गुरमुख पाया तिस किश अवरनाही दृष्टाया नाम धन नाम उर्वरंग नाम सुकर नाम का संग नाम राजो जंत्र बधाने मंत्र नामे नाम समाने उठत बैठ सोबत नाम कहु नानक जन कै सदकाम बोलहो जस जेबा दिन रात प्रभ अपनाय जन किन्नी दात करे भगत आत्म कै चाहे प्रभ प्रभ अपने स्यों रहे समाए जो होवा हो बसो जाने प्रभ ने का हुक्म बिछाने तिसकी महिमा गौन बखानाऊ तिसका गुण कह एक ना जानाऊ आठ पहर प्रभ से हजूरे कहु

जिन चाख्या से जंत्र बताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुभर परे प्रेम रस रंग बजे चाओ साध गए संग परे सरन आन सब दया गंधर वर्गा संदिल निवलाग बड़भागी जपया ब्रह सोए नानक नाम रत्ते सुख होए सेवक की बंसा पूरी भई सतगुरु ते निर्मल मत लाई जन गो ब्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन गाड़ मुख जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इस पुन्नी श्रद्धा सब पूरी लवरया सत्संग हजूरी

तै कौन कौ मान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश तै छल छिद्र लगत कौ कीस, जय जो सुरपी जो संग समावै तै किसे भूख का मंदिर बतावै, करन करावन करने हार नानक करते का नाहे सुमार, जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कला आपे परवीन तब वेद गदेव कह कऊ चीन, जब अपने आप आप उतार है तो शगन अब शगन कहाँ विचार है, जे अपनु जापनाप नेरा तै कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा, बिस्मन बिस्म रय बिस्माद नानक अपनी गत जानू आप, जा शल अशेद अपे समाया उहां किसे ब्यापत माया, आपस गुआ पे आदेश ते गुण का नाही प्रवेश, जा एक एक ए भगवंता तै कौन अचिंत किस लागे चिंता, जे अपन आप आपतियारा तै कौन कथे कौन सुनने हारा, भवयंत उचते उच्चा नानक आपस गो आपे पहुचा, जा प्रचो प्रपंच अकार त्यो तेह गुण में किन्नो विस्थार, पापंत पही कहावत कऊ नरको स्वर्ग वंशावत, आल जाल माया जंजाल हमे मोह परम व्यापार, दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान, अपन खे लाभ कर देख्या

अलप तो रहे जो किस कहण जो किस कहना सो आपे कह आ गया आवे आ गया जाए नानक जा भावे त लय समाए इसे हुए सो नाही बुरा बुरा कह हो कने कश करा आप ना कर तू ता तनी की आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साज ओत पोत आपन संगराज तागी गतबिंद कही ना जाए दूसरे ता सोजी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने ते सदा सुख हुए आप मिलाए लय प्रभ सोए।

तीर्थ नावा जे तिस भावा विण भाणे के नाय करी जेती सिरठी उपाई वेखा विण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर मानक जेक गुर की सिख सुनी

मन कोय, मन्ने मार्ग ठाग न पाए, मन्ने पास्यों परगट जाए, मन्ने मागु न चाले पंथ, मन्ने धर्म से तीन संबंध,

अलंकार असंख नाम असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला।

पालय के सर्वत्र हमता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र तरान है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कली में के परमं फही में के आकल अला में के साहिब कला में के हुसन अल वजू है तमाम अल रुजू है

अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगंभ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट शांत वे प्रसाद, सर्वंग हमता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हरता, सर्वंग करता, सर्वंग प्राणं, सर्वंग त्राणं, सर्वंग कर्मं, सर्वंग धर्मं, सर्वंग जूता, सर्वंग मुक्ता, रसावल शांत वे प्रसाद, नमो नरक नासे सदैव प्रकाशे नंगं स्वरूपे भंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी।

शंकर काठा शिगरी सृहत दिखाया त्यंपवा जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबारे सिख संग्रह दुहित जिते उठवते उत्पाता सकल मिले करो रन कहता जे अह तुह तब सरनी परे तिनके दुहित दुहित होवै मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह है।

पारी सर्ब ठाउर मोह सहाई दुष्ट दोह तेले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल विक सकल देह को हरता दुष्ट दोखण कौशा करता श्री अह तुर जग पह दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मान बाहित फल पावे सोई दुख न तिसै बे आपत कोई अडिल सुने।

नाम मेराया दहरु वाज्य पंच शब्द तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूध तुद वासी।

चित लाइए ऐसा काम भूले ना कीचे जित अंत पछोताइए। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले कहे नानक मान प्यारे तू सदा सच संभाले।

तजड़ाओ सेव संगत आप ही उपाय कह करता आप हुक्मरताए हुक्मरताए आप वेख गुरमुख से बजाय तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जहन आप करे सो होवे एक सस्यों लिवलाए कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत साध त्रिपुन पाप विचार दे तत्तै सार न जानी तत्तै सार न जानी गुरु बाजहो तत्तै सार न जानी तिही गुणी संसार ब्रह्म सुता सुत्या रैन विहानी।

0: का किया सगल जहां
1: सेवा कर मुखलाप निरंजना मचाओ सिखी सिख्या गुरु विचार नजर कुन लगाए पार बोलू चक्का चक्की चक थल बरोले बहुत अनंत लाटू मा धानी आन गा पंखी पौंदे लांसा सुए चाड़ पुआई जंत नानक पौंदे अंगन

0: तिसहि को ग्रह सोई प्रभ नानक सो ठाकर तिसहि को दीना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती। मन वजियां वधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां। शब्दो तां गावो हरि केरा, मन जनी वसाया, कहे नानक आनंद हुआ। सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया, तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरा, दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा, कार्य सब सवारना, सबना गला समरा स्वामी, सो क्यों मनो वसारे, कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही, कर तेरा कर तां तेरा, सब किछ है जिस दे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी ना मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सचे साहिब क्या नाही, कर तेरा साचा नाम मेरा आधार, हो सच नाम उधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया, कर सांत सुख मान्याय वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो, जिस दियां वडियाईया, कहे नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारू। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंट कुमारिया, तुर करम पाया तुद जिन को, से नाम हर कह लागे, कहे नानक तह सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे, अनसुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे, सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सची बाणी, संत साजन पै सरसे, पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहा भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहा भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
0: ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵਾ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ, ਪਾਲਿਆ ਕਿਰਤ ਕਣਾ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। ਸਤਨਾਮ

सहज रहस मन उपजो सगले दुख पलाए ना रसना गुण गोपाल निद गायना सात सहज रहस मन उपजो सगले दुख पलाए ना रहा।

पूज खुवार जिनको सतगुर थापे आ तिन मेट ना सकै कोय। ओ ना अंदर नाम निदान है नाम प्रगट होए नाओ पूजी है नाओ मनिए अखंड सदा सच सोए। केहू खेर लाइए तांजियो केहा होए जलिया सब सियानपा उठी चलिया रोए नानक नाम सारे दर गया क्या होए। श्री राग महला पहला गुणवंती गुण विथरै

हार परिहु स्वामी कै द्वारे दीजै बुद्ध विकार हाउ मोन बहु कर पाती रहो नगन फिरियो मन माही तट तीर सब धरती प्रमियो दुविधा छुटकै नाही मन कामना तीर्थ जाए पसी बस्यो सिर करवत तराए मन की मैल न उतरे इब जे लख जतन कराए कनक कामनी हैवर गैवर महविद दान दातारा अन मस्त भूम भावर पे न मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंदर दंडौत खटकर्मा रात रहता हाँ कर्त बंदर मैं परिया न मिलिए युगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ही ए पी कर कर रहा वडी अर्जा फिर जन्म हर स्यों संग।

सेज सोहनी चंदन जुआ नरक घोर का द्वारा हर कीरत साध संगत है सिर करमन कह करमा कहो नानक तिस पहो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना तेरे सेवक ए रंग माता तेरो सेवक ए रंग माता पैओ कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन ए मन राता तेरे सेवक तेरो सेवक ए रंग माता पैओ कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा वाहिगुरु जी का खालसा।